रहिए। साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लइए। सदा सदा हम शोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक तुम माध पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा तार दूजा दो पदे एक ओ अंकार। सदगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अबर कछु मेरे संग न चाले। मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज मार अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम। ताए ताए वो विद को तावे सगल निरार्थ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो दिसे सगल बात है खाम। पो नानक संतरे न मांगो।

इन्नी आ परगाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले तिन से सोग संताप आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक सरन परे दुख पंजन जा काबड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे तर्ब अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाएगे माया रच बंद हारे चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद हां हां लपटे उरे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी अरहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचो जिद पूग तसायो अमृत नाम तुसा नहीं पायो ताम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानको तरया टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ वड्डे पागुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताब्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात घर गुनिया महा आनंद कीर्तन घर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब के गृह।

आठ तो सत्संग मोर मन अपने कहो मैं हर सगा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवां प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमखी रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीन के दाते

गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ ते तीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सदगुरु दान देवा।

तब हर हर हर जस त्यायो, जन नानक कहो हर भेटे स्वामी, दुख होमे रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे। हर भवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निकट बस्त कछ नजर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो सहो सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाए गए हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मान हर हर नाम नित ध्याए, जो इच्छे सोई फल पावे। फिर दुख

तन मैल न पावे विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लभ लोभ अंकार की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाइये जो किश करे सो भला करमानिए। हिकमत हुकम चुकाइये जा के प्रेम पदार्थ पाइये तौ चरणी चित लाइये। सौ कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइये। एव कह सुहागणी पैणे किन्नी बाती सो पाइये आप गवाइगे ता सो पाइगे और कैसी चतराई। सौ नदर कर देख सोधन लिख कामण नौ निध पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती अहे निस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप चखण कहिए सास।

निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कर जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पल पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिल उपजिया संग ही, सो ती संग न होया रहाओ, मात पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मनिहो लगायो, काल फास जब गल परी।

तीन तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवि द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो मन संपट जित ससरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरहे कहंदे कह कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई भगत हीन नानक जन जंपे आओ सारा ही सच्चा सोई सूही मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोड़ कहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे केरे रहाओ ज्ञान ध्यान सब कोई रवै बंधन बंधया सब जग

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही महला पहला कार सतवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दिष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माए नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है सदगुर भेटे ता सहसा टूटे तावत वर्ज रहाई है निज चरे सह तुन लाग करगी परचा पाई है अंजन माए नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजों सिंगी वाजे तौ निरभौ पल पाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिल हारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नर को राहोय, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाय, गुरमुख पीवे सहे सुमाय, हर राजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लो भाई, अरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार्य से जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब ले जाए, अरहाव अरवदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाय, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नाग तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूफी महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाव तोर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते घर पाईए, सिर निंदक कै पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद, विखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूफी महला चौथा, जिथे घर आरा दिए, तिथे घर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होर तबिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, अरहाव सह संगति संघ हर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर मानक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगता को मिली वड्याई, हर तन निरपौ सदा सदा।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुध सिरट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुखराता, कहो नानक प्रभु बिनो सुनीज, कुचर कठोर

क्रोध लोभ मोह बाधा मां गर्त मैं निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय दूपत पाहन प्रभ मेरे लीजे सूही महला पंजवा जीवित मरे बुझे प्रभ सोए इस जान कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिये मिल साधु हर नाम उच्चरिये रखाओ एक बिना दूजा नहीं जाने घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किछु करे सोई फल माने।

एक करै अरदास, विसर नाही पूर्ण गुणतास। सूही महला पंजवां, मीत साजन सुध बंधव पाई, जद कद पेखो हर संग सहाई। जात मेरी पत मेरी तन हर नाम, सूग सहज आनंद विश्राम रखाओ। पार ब्रह्म जब पैर सनाहा, कोड आबद तिस बेद तनाहे। हर चरण सरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम तिसना बिदारे। नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनद विनोद

तुम छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महाबिकराला, खिन मैं दूर किए दयाला, सोग रोग बिपत अद पारी, दूर पई जपना मुरारी, दृढ़ तार लीनो लड़लाए, हर चरण गए नानक सरणाए, सूही महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए।

कामना तौल हार जित हर बसराए रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रवचित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपटाए पीसना पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना किते काज जित नहे त्रिवताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जे रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास सिमर तरह नानक दान पाए सूही महला पंजवां।

आठ पैर जित तुद ते आई, निर्मल होवे देह मेरे राम। हाँ सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग, तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पाड़ ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरे बिरलाते, ते पी मोहे माई। दस अवतार अराजे हुए वरते, मां देव अवधूता। तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सबल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन

तेरे सेवक कौ पौ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग रते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नस, तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ध्यान सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्टले सद है। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी। सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रखनहारे, जित तू लावे तित हम लागे। क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी। अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या होइए सब रेणा, जीवत्या इो मरिए। सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे। दीन दयाल किरपाल प्रभु स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला। राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

तंद जियो, नाम ते आवे छे जिन चले, और पूरे संबंध जियो, हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया हुम करे रस भोग जियो, जिसनू करता विसरे तिसे विछोड़ा सोग जियो।

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम फुलाणी, जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, तिरका सहज ना पाया, सदगुर पूछ ना मार्ग।

परम गद पाई, पंच मिले सोहाया, गया क्रोध ममता तननाठी, पाखंड परम गवाया, हौ में तीर गई सुख पाया, आरोगत पय शरीरा, गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए, बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे, महादुख पावे, वेण सतगुरु मगना पाया, उजड़ पंथ प्रमे गावारी, खिन खिन तक्के खाया, आपे दया करे प्रवदाता, सदगुर पुरख मिलाए, जन्म जन्म के विछड़े जन्म मेले, नानक सहज सुपाए, आया लगन गणाए, हिरदे तन ओ माई।

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बा

नदर प्रभु सत्संग हर मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन बीचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभ कहे सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर्पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लए मिलाए नानक सो प्रभ

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुर वड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है।

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए। ज्यो टेके ना बिरख की छाओ, गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सगत सिवे कर आई, मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बरिहारी गुर अपने, जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा, सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए। इस लेंदे बिलम न हो वई, रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर, पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आपे उपायन आप कीमत पाई, सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है,

आपे सृष्ट उपायन आपे फुन गोई जुग चारे सब पक्ष की किन कीमत होई। सतगुर एक विखालिया मान तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई है करता करे सोई। श्लोक मोहल्ला दूजा जिन्ना पाओ तिन नाए पाओ मुझ पौने पवे आहा नानके उपटंतरा तित दीबान गए आहा। महला दूज तुरदे को तुरदा मिले उड़ते को उड़ता जीवते को जीवता मिले मुए को मुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सचे गुर शब्द विचारी। होमे मार मन निर्मला हर नाम उर तारी कोठे मंडप माड़िया लग पै गवारी जिन की एत से ना जाननी मनमुख गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सत्या क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामण तौसी गार कर

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सत फुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पाचड़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या।

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते सोभा पाई, जगदी सेवो में अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर विख है, बौड़ ना मरे ना जमपिख है, करही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय दिखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक त्रिशन भुजी मन तन सुख पाया, अराग बलावल महला चौथा, कार तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उद्यम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नडुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना, जप मन

माया ग्रस्त परमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना, ज्यो प्रहलाद हरनास ग्रस्यो, हर रख्यो हर सरना, कामन कमन की गात मित कहिए, हर की गे पतत पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चमचमरे, हार उतरे ओ परे ओ सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दासन्ना, बलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञानमती, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले।

जे बात होवे नहीं। अपना भला सब कोई बछ सो करे, जे मेरे चितना चितैनी, मन की मत ते आगो हरजन, एहा पात कठैनी, आन दिन हर हर नाम ते आवो, गुर सतगुर की मत लैनी, मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे ते वे बोलैनी। बलाबल मोहल्ला चौथा, आनंद मूल त्यायो पुरखोत्म, अन दिन अंध आनंदे, धर्म राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे, जप मन हर हर नाम गोविंदे, वडभागी गुर सदगुर पाया, गुण गाए परमानंदे रघाओ, साकत मूड माया के बधक, विच माया फिरे फिरंदे, तृष्णा जल तक किरत के बांधे, जो तेली बल्द पवंदे, गुरमुख सेव लगे से उधरे, वडभागी सेव करंदे।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइये घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावन मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित आसा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रप अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पावो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोगत रह निरारा शेर ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

मुई अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुई निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज,

संतन पगराल उगत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल प्राम पै राखो मोहते कट हो जमजाल बिनो करो करना पते।

अलोड़े सो करे तुझ बिन कछ नाहे परताप तुम्हारा देख कै जम दूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटिए बिन से अहमेव सर्व कला समर्थ प्राप पूरे गुरदेव रहाओ खोजत खोजत खोजया नामे बिन कूर जीवन सुख सब साध संग ब्राह्मण सापूर जित जित लाभो तित तित लगे स्यानप सब जाली जत कत तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सबके तुम ते मंगना वडभागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए बिलावल मुहला पंजवा साध संगत कहे बास बै कलमल सब नसना प्रभ से ती रंग रातिया ताते गर्भना ग्रसना नाम कैद गोविंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल होई है गुर का जब जपना रखाओ हर त्यागत त्रापया मन रस लय हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बेगसना शीतल सांत संतोख होए था बूझी तृष्णा दैध तावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारी राखिया पय प्रांपसना नाम निधान नानक सुखी पेख साध दर्शना बलावल मुहला पंजवा पानी पखा तीस दास कह तब होवे निहाल राज मिलक सिकदारिया अग्नि मै जाल संत जना का शोरा ते चरणी लाग माया तारी छद्रपात तिन छोडो त्याग रखाओ संतन का दाना रूखा तो सर्बनधान गृह सागत क्षति प्रकार ते बिहु समान भगत जना का लूगरा ओड नगन न होई सागत सिर पाओ रेशमी पैरत पद खोई सागत स्यो मुख जोरे अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे एत पूते छूटे साग किश तुम ही ते हुआ आप बंत बनाई दर्शन पीड़त साधका नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रमनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश धर हर नाम ते आवो

रोग रगव औगद हर का नाम है जित रोग ना व्याप साध संग मन तन हित फिर दुख ना जाप हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई सोनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बिलाई महामंत्र नानक कथ हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए सांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

निर्लज्जे पांड हर संग सहाई महामीत तिसो तेरा भेद बीधा पंच बटवाराई उपजो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तान तन सर्वस अपना प्रभ जन को दीना बलाबल मोहला पनवा उदम करत आनंद पया सिमरत सुखसार जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रखाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कजपोच तन सो थान बसंत तन जय जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम मन ते कदे ना विसर अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जाके सब किस गात बिलावल मोहला पनवा जिन तू बंद कर छोड़या पुर सुखमय पाया सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया जीवतया अथवा मोया किस काम न आवे जिन इउ रचन रचाया को तिस जो रंग लावे रखाओ रे प्राणी उसन सीत करता करे काम ते काढ़े कीरी ते हस्ती करे तू टाले गंडे अंडज जेरज सेत उत्पज प्रभ की एक किरत किरत कमावन सर्व फल रब गे हर निरत हम ते कछु ना होवना शरण प्रसाद मोह मगन कूब अंध ते नानक गुर काढ़ बिलावल मोहला पनवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बनतान अश अशेद अभेद प्राव ऐसे भगवान ताब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागन ते सुबना भला बसिए प्रसंग रखाओ वर्ण आश्रम सत्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगीसर कर कृपा जाको मिले।

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चत निभत रहे गुर शब्द अखूट पूर्ण पई समग्री।

राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रतेरिया प्रभु की वड्याई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा सिमर सिमर पूर्ण प्रभु, कार्ज पैरास करतारपुर करता वसै, संतन के पास रखाओ बिघन न को लागता। गुर पै अरदास रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास तोट न आवे कदे मूल। पूर्ण पंडार चरण कवन मन तन बसे, प्रपगम अपार बस्त कमावत सब सुखी। इस ऊन ना दिस संत प्रसाद पेटे प्रभु, पूर्ण जगदीश है। जय जयकार सबे करे सच थान सोह, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा हर हर हर आराधिये, होइए आरोग रामचंद की लसत का, जिन मारिया रोग रखाव। गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कै वारणे मिलिया संयोग। जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नानक

सतगुर प्रसाद अवर उपास त्यागया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुर पूरा आ

अपनाया, सेमर सेमर मन तन सुखी, नाक निरपया, बिलावल मुहला पंजवा, कर तर मस्तक थापया, नाम दी नूदान, सबल सेवा पार ब्रह्म की, ताकि नहीं हान, आपे ही प्रवराखता, भगतन की आन, जो जो चितवे साध जान, जो लेता मान रखाओ, शरण परे चरणारविंद, जन प्रभु के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले, ज्योति जोत समान, बलावल मुहल्ला पंजवा, चरण कमल का आसरा, दीनू प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे, ताका सद प्रताप, राखनहार अपार प्रभ, ताकी निर्मल सेव, राम राज, रामदास पुर, इन्हें गुरदेव रखाओ, सदा सदा घर त्याई है, किस विघन न लाग, नानक नाम सलाई है, पैद सुमन पग, बिलावल मुहल्ला पंजवा, मन तन प्रभ आराधिये मिल साध समग, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम पग, राम नाम जो जन जपै, आन दिन सद जागै, तंत मंत नै जो होई, तित चाख न लागै रहाओ, काम क्रोध मद मान मोह,

रोग मिटाए जीवालयन, जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेन, अपनी कल तारी मन बांझत फल दितेन, नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवा, चौपदे दो पदे करछेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवनी ए ना सुनाए, साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ, सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए, अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए, रसना अघ अघ गुण राती नयन दर्श रंग लाए।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए। जो

पर पावे केहत सुनत सदा संहरे रहाओ। काज भयाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन तौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लबटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुंह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटे काढ़े वहां भरे। बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे।

चरण गहे आमण जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किलवख दहे निरपो होए पजो जगदीश इो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिखारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

मूला नस्यों प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताची दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

जो जो कीनो सो तुम जानो पेखियो ठौर नाही कछ तीठ मुकरण बड़ प्रताप सुनियो प्रभु तुमरो ओट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाव सदा सदा फूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करणा मैं किरपाल किरपा निध जीवन पद नानक हर दर्शन।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बीचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखिया राता स्वान जैसे। औद विहावत अधक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए। जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खय। महामुद अजान अज्ञानी रखे थार दए। कहो नानक गुरपुरा फेट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी उपजो चाओ मिलन प्रीतम रहे ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि अंधले टेक निर थन थन पायो। प्रभ नानक अनक गुणी राग बिलावल महला पंजवां कर तेरवां पड़ताल।

रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आमोय नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावन महला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रखाओ आहे मन अवरना भावे चरणावे चरणावे उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एक हर लाहे अन ते टूटी है रिखते छूटी है मान हरस कूटी है संग साधु उल्टी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं जब ही राम बखानो नारद कैत सुंदरू बारक भजन माए लबटानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो। नानक कहत भगत रशक हर निकट ताए तुम मानो बिलावल महला नामा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा नहीं चूके

पुराण पुकार धर्म करो खट कर्म दरड़ैया मन मुख पाखंड परम विगूते लोभ लहर नाभ पार बुड़ैया नाम जपो नामे गल पाओ सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया होमे जाए तन निर्मल होवे गुरमुख परचे परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत जाए वाजे जित फावे तित राहे चलैया। बिलावल मोहल्ला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हौ बल बल सतगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण मसाए सतगुर परस हर नाम समैया जन कीते हर नाम टकैया सतगुर की तर लागा जाव गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ यो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मस मत तत कढ़ैया लाल जवे हर नाम परगासिया पांडे पाओ पवे तित अय्या दासन दास दास होई रहिए योजन राम भगत निज पैया मन बुद्ध अर्प थरो गुर आगे गुर प्रसादी मैं आकाश कसैया मन मुख माया मोहे आपे यो मंत्र सना जल तित खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया यो मन नाचे सदगुर आगे अनगल शब्द तुन तूर बजैया हर उस्त करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर की रंग रता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज करतार चुए अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लैया मन हर कर्म करे अभमानी जो बालक बालू कर उसरैया आवे लहर सुमंद सागर की खिन मैं पिन पिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे यो जग है सब खेल खेलैया ज्यो जल तरंग जल जले समावे नानक आपे आप रमैया। बिलावल मोहल्ला चौथा सतगुर परचे मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया अमर पिंड पै साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहैया कृपा करो मसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रखाओ तदे ग्रस्त पया बनवासी एक मनुआ टिके ना टकैया धावत ताए तदे कर आवे हर घर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे गुर कै शब्द नराज सुख लैया उबजी तर्क दिगंबर हुआ मन दहे दिस चल चल गमन करैया पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा मिल संग साथ दया कर लैया आसन सिद्ध सिखे बहु तेरे मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन सांतन आवे मिर साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया पंडज जेरज सेतज उत्खुज तवर्ण रूप जीजंत उपैया साधु शरण परे सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय दियो कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमियार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन तना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई

अवर के जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हूँ आकल विकल पई गुर देखे, हौन लोड पोड होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिरो सब देह दिसंतर, मैं प्र देखन को बहुत मन चैया, मन तन काड दियो गुर आगे, जे हर प्र मार्ग पंथ दिखैया, कोई आण सुंदे सादे प्रव केरा, ते अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्तक काड दियो चरणा तल, जो हर प्र मेले मेल मलैया, चाल चल सगी हम प्र प्रबोध, गुण कामन कर हर प्रव लैया, भगत वत्सल ओआ को नाम कहित है, तरण प्रभु तिस पाछे पैया, किमा सीगार करे प्र खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस पो करे प्रा मेरा, हम तस आगे जियो कट कट पैया, हार हार हार कंठ गए बनया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया, हर घर श्रद्धा से वसाई, प्र छोड़ न सके बहुत मन पैया, तय प्रभ आवर आवर किस कीजे, तब बाद सीगार फोकट फोकटैया, कियो सीगार मिलन कहताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम तेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करे तेरे बस पैया, दया दीन करो रख लेवो, नान हर गुर शरण समैया, बिलावल मोहल्ला चौथा, मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया, गुर देखे श्रद्धा मन पूरी, क्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया, मेल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रा मेले, मैं तस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्र देखे बिन नींद ना पैया, वैदक नाटक देख पोलाने, मैं हिरदे मन तन प्रेम पीर लगैया, हाँ खिन पाल रहे ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गैया, जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दुईया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हाँ तस विट्टो बाल बाल कुम गैया, अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुरु शरण पवैया, सेज एक एक प्रठाकुर, महल न पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत शरण जी आवे, प्रभ आए मिले कन टील न पैया, तार कर क्रिया चार बधाए, मन पाखंड कर्म कपट लू भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया, पिता ताए क्या नाम सवैया, पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया, जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकुर कृपा थारी, बां पकर नानक कढ़ लैया, राग बिलावल महला पंजवां, अष्टपदी कर बारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही, तज आन शरण गही रखाओ, प्रभ चरण कमल अपार, हम जाओ सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कते ना जाहे, हर नाम रसना कहेन, मल पाप कल मल दहेन।

का नाम ते आए दीनानाथ दयाल मेरे स्वामी दीनानाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ संसार विखिया कूप ताम अज्ञान मोहत कूप गए पूजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना देहु प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो नानका बल बल जाओ लोभ मोह बादी देहे बिन भजन होवत खेहे जमदूत महा पयान चित गुप्त कर्म है जान देन रैन साग सुनाए नानका हर शरणाए पय पंजना मुरार कर दया पतक उधार मेरे दोख गने ना जाहे हर बिना कते समाहे गै ओट चितवी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण दे गोपाल सर्व कड़ प्रतपाल मन प्री दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमख रहन ना जाए वड़भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर जो मीन जल सुवेत आल कमल पिन ना पेत जो चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास जो तरन परत परान जो लोभिये तन दान जो दूध जले संजोग जो मां खुदिया रस भोग जो माद पूते हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हिरत निसंग मैगल कामे बंद ज्यो ग्रस्त बखई तंद ज्यो जुआर बिसन ना जाए हर नानक इहो मन लाए कुरंक ना देने हो चात्रक चाहत में हो जन जीवना सत्संग गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे तो सर्व फल हर ले उल समूह करत उधार संसार उतर सपार हर चरण भोजित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मुरार हर नानक शरण

तृतीय ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देवोपाय वेशा ज्योति जाति गणतन आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखां दूर चौथ उपाय चारे बेदा खानी चारे बाणी फेदा अष्ट दिशा खड़ तीन उपाय

जिस लहे मिलाई, शुक्रवार प्रवरया समाई, आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख होवे सो करे विचार, सच संजम

गोविंद के सब इश पुजामी राम नानक उधरे जप हरे सहू का स्वामी राम रखे नेड़े अपने राम संगे ते लोइन नीके राम प्रापेहत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया दिखिया रस पीके राम नानक जल जले समाया ज्योति।

जे हर त्याग अवर की आस कीजे ता हर निफल सब काल गवासा मेरे मान हर सेवे सुख दाता स्वामी जित सेवे सा भुख लखासा मेरे मान हर ऊपर कीजे परवासा।

लूट लेहे सागत पद खोवे, सात जना पगमल मलत होवे, पांच पूत जने एक माए, उत पुज खेल कर जगत विहाए, तीन गुणा के संग रच रसे, इनको छोड़ ऊपर जन

तसना सिमरत पाप बलायन अरहाव नारायण थम है निवास नारायण कड़कड़ परगास नारायण कहते नरक न जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन महे आधार नारायण भोयत संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पाने डायन नारायण।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे।

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल पए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

सेवक ताज जगत स्यों सूती, साधु कै ठांडी दरबार, तरन तेरी मोको निस्तार। सुहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी, जाओ लग प्राण तऊ लग संगे, नहे त चली बेग उठ नंगे। सुहागन पवन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे, बड़े भूपत राजे हैं सिद्धे। सुहागन

जैसे गाय का बाछा छूटला, थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया, पुर पीड़ित अलख लखाया। जैसे बिखे हिद परनारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा।

तखात बतावे गुरमुख साह सही प्रपाए कर कृपा आप मिलावे राम मोको हर जन मेल मन पावे अम्यो अम्यो हर सह मीठा मिल संत जना मुख पावे रखाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावे हम होत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी कराए सेव जन सेवे से बड़ पागी इद मंतन प्रीत लगावे बिन प्रीति करे बो बाता कूड़ बोल कूड़ो फल पावे मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावे औ काटो काट बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जीवड़ पा हुए वड मेरे जन मिलदिया ढिल न लाइये हर दिन अमृत कुण सर नीके वड़ पागी तित ना भाइये राम मोको हर जन कारे लागे ओ पानी पखा पीसो संत आगे पाग मल मल तूर मुख लाई गए रखाओ हर दिन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सदगुर मेल मिलाये सदगुर जेव अवर न कोई मिल सदगुर पुरख तिहाई गे सदगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई गे एक अपने सुहाए आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाए गे बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखु मुख लाई गे नानक मेल मेल प्रसंगत मिल संगत हंस कराइये राम कली महला चौथा सदगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगे गुर चरणी जिन हर प्रा मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रखाओ मेरे एकिन प्राण न रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया तन तन वड़ भाग गुर सरणी आए हर गोबिंद दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हार जब जपूज पाया नामहीन तेरे से नगटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीव जी वाल लै स्वामी बिन अंतर नाम साया नानक गुरु गुरु है पूरा मेरे सतगुर नाम तिहाया राम कली महला चौथा सदगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरम कथा सुनी मन पाई तन तन वड़ पाग हमारे रखाओ कोट कोट ते तीस त्यावे ताका अंत न पावे पारे हिरदे काम कामनी मांगे हिरद मांगे हाथ पसारे हर जस जप जप वड़ा वडेरा गुरमुख रखो उरतारे जे वड़पा होवे तां जपिए हर पौजल पार उतारे हर जन निकट निट हर जन है हर राखे कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे राग राम कली

तुम मैं मान कलाला, तुम देव उत्ते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम सगुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सा सीगारी रघाओ, आखार मंडली तरण सवाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जल ते उपत हुआ, पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पाद दिखावे, सभो निरारी पाखे, तार कर नृत होवे दिन राती, हर कड़वा जे तूरा, एक नचाव है, एक पवाव है, एक आए जाए हुए तूरा।

राय सो नर भोर न जो नहीं पाए जाके अंतर पलटो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया फिर कुटम ओ जन ले तरिया।

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा ताकी केतक वर्ण बल बल जयगे ताके चरण तिन्ही किया जब तब ध्यान अनक प्रकार किया तिन दान भगत सोई

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिना सब चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते सा माया मूठ परानी रखाओ तीर्थ नाये न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्रतुम रे हाथ।

पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोधत सोधत सोध बिचारा बिन घर भगत नहीं छुटकारा सोहर भजन साध कै संग मन तन रापे हर कै रंग तोड सियाणप बहु चतराई मन बिर हर नावे जाए ना काई दया धारी गोविंद गुसाई हर घर नानक टेक टकाई राम करी महला पंजवा संत कै संग राम रंकेल आगे जमस्यो होए ना मेल अंगबुद का पया विनाश दुर्मत होई सगली नास राम नाम।

आनंद न हो भी सोग, कहु न व्यापे हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, विस्मन विस्म पय विस्मादा, परम गद पावे हर सिमर प्राणी रखाओ। गण मन देखो सगल विचार, ना बिना को सके ना तार, सगल उपावन चल है संग, पवजल तरिगे प्रभ के रंग। देही तोय न उतरै मैल, होमे व्यापे दुबदा फैल, हार हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए।

अभमान दिन रैन सदा गुण गाओ पूर्ण एही सुवाओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बोच पराई गुर का जप मत निर्मल हरहाओ एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उत्तर है पार देवन हार दातार अंत न पारावार जाके कर सर्ब निदान रखन हार निदान नानक पाया इहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपे इसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दुलभ देसवार दायना दरगे हार हलत पलत तुद होए वड़ियाई अंत की बेला लय छाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोवे सुहेले अचरज पुरख तिहाओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसे सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तम यो कर्म सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरे पार पूर्ण तेरी होवे आस जम की कटिए तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजे नानक सुख सहज समीजे।

सत सहज सुपावे मीत साय मेरा अदपारा किन में था प्यो था पनहारा जिबन अवर न कोई जनका राखा सोई तार कृपा अरदास सुनीजे अपने सेवक को दर्शन दीजे नानक जापी जप जाप सब ते ऊच

हर शरण मन तन हर ओई ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसही की ओर सदीव जाके किन्ने गए जीव, सिमरत हर करत निधान रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप मिटाए मलीजे, अनदन तय गे नाम सबल नानक क्यों काम। राम कली महला पंजवा, कारण करन करीम सर्व प्रतपाल रहीम। अलह अला खे पार खुद खुदाए वड बेसुमार, ओ नमो भगवंत खुसाई खालक रब रया सर्व ठाई रहाव। जगन्नाथ जग जीवन माधो, पौ पंजन हृदमाय आराधो। रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्बत तरमुकंद, मेहरवान मौला तू ही एक। पीर पैकंबर शेख।

नाम जपत परम सुख पाइये, आवा गौण मिटे मेरे मीत रखाव, गुण गावत हो प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए उधार, नानक भवजल पुत्र सपार, राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल बिना से रोग पूरा रखाओ, एक अरध हो साचा सोए, जा की शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत दिन से सब दुख, सहज आनंद करो मेरे पाई, गुरपूरे सब चिंत

संतो कछु अकथ कहानी। ए मन चंचला चितराई किने न पाया, चितराई न पाया किने। तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी, जेन एद परम फुलाया। माया ता मोहनी तने कीती, जिन ठगोली पाईया। कुर्बान कीता तसे विटो, जिन वो मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चितराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, यो कुटुंब तू जे देखदा। चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही। इस नाल क्यों चित लाई है, ऐसा काम मूले ना कीचे। जित अंत पछोताई है, सगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचर तेरा अंत न पाया।

कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन मसाया। जी जंत सब तुत उपाय, एक वेग परसने आया। लब लोभ अहंकार चूका, सगुरु पला पाया। कहे नानक जिसनु आव तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी। बेखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तत सुना। बहुत ना ही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी। एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजया। हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता। जुग हो जुग निराली, ज्यो तू चलाए तिव चले स्वामी। होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिवे चले। जिन्ना मार्ग पावे, हर कृपा जिन नाम लाए। से हर हर सदा त्यावे, जिसनु कथा सुनाए अपनी। से गुरुद्वारे सुख पावे, कहे नानक सच्चे साहेब। जो पावे तिवे चलावे, यो सोहिला शब्द सुहावा। शब्दो सुहावा सदा सोहिला, सदगुरु सुनाया। यो तिनके मन वसया, जिन तुरो लिखया आया। एक फिरे कनेरे करे गल्ला, गल्ली किने न पाया। कहे नानक शब्द सोहिला, सदगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया, हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटाम्ब सहत सो। पवित संगत सबाईया, कहंदे पवित सुन दे पवित। से पवित जिन्नी मन मसाया, कहे नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर त्याया। करमी सहज न उपजे, विण सहजे सहसा न जाए। न जाए सहसा किते संजम, रहे कर्म कमाए। सहसे जीव मलीन है, कित संजम तोता जाए। मन तो भो शब्द लाग हो, हर स्यों रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे, ए सहसा इबजाए। जी ओ मैले बार हो निर्मल, बार हो निर्मल जीओ ता मैले। तिनी जन्म जुगे हारिया, इस ना वड्डा रोग लगा। मरण मनो विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही। फिरे ज्यो बेता लिया, कहे नानक जिन सत जया। कूड़े लागे तिनी जन्म जुगे हारिया। जी ओ निर्मल बार हो निर्मल, बार हो ता निर्मल जी ओ निर्मल। सगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही। मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया। पले से वणजारे, कहे नानक जिन मन निर्मल। सदा रहे गुरु नाले, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। होवे ता सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हिरदे ते आए, अंतर आत्म समाले। आप छड सदा रहे परणे, गुरबिन अवर न जाने कोय। कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। जे को गुरते वे मुख होवे, बिन स गुरमुक्त न पावे। पावे मुक्त न होर से कोई, पुछो विवेकियां जाए। अनेक जूनी परम आवे, वेण सगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सगुरु सब सुनाए। कहे नानक विचार देखो, वेण सगुर मुक्त न पाए। आप हो सिख सगुरु के प्यारे हो, गाव हो सच्ची बाणी। बाणी ता गाव हो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवे, हृदय तिना सुमाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर अंग, जप्यो सार्ग पाणी। कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सगुरु बाजो। होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे, सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करे रसना, कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया माया, बोलन पए रवाणी। कहे नानक सदगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का सदर तन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, यहोवा समाओ। सबसे ती मन मिलया, सत्ते लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनु दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। शिव सगत आप उपाय के करता, आपे हुमरताए। हुकुमरताए आप वेख, गुरमुख से बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त, शब्द मन मसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे, एक स्यों लिमलाए। कहे नानक आप करता, आपे हुकुम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी। तत्ते सार न जानी गुरु बाजो, तत्ते सार न जानी।
ਤੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਦ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰੀਏ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵੇ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਦ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੇ ਤਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸਮਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਖਾੜੀ ਇਹੋ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕਾ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਸ ਰਾਹ ਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਇਹੋ ਹਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸੇ ਆਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਸ ਵਿਸਰੇ ਜਹਾਂ ਵਸਤੇ ਮਨ ਆਏ ਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤੁਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੂ ਪਾਏ ਜਿਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਟਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਓ ਪਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਵੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पुनवा हर हर त्याए मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायना केल खरना ना पुने चरणा ना जमकी त्रास हरा बिनवंत नानक राज जन की चरण कमल है आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जानई देख चलत दयाल सुन भगत वखानई जी जंत तो त्यावे पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाजक एक दाता करना में जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मानई।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुण रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुरु मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़।

समाए काहे भिख्या मंगण जाए पौड़ी हर मंदर सोई आखिए जिथों हर जाता मान दे गुरबच नहीं पाया तब आत्म राम पछाता बार मूल ना खोजिए कर माए विधाता मनमुख हर मंदर की सार ना जाननी तिनी जन्म गवाता सब में एक वर्तदा गुरसवधी पाया जाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लक्षण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख हो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एत कमाने सदा दुख दुख ही मैं रहना अत प्यारा पवे खूह क्यों संजम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जोत पावे सो करे जो दे सो सहना महला पहला नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही तलबा पोसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल फरेश्ता होसी आए तई आमन जान न सुजई पीड़ी गली पई ऊड़न कुट्टे नानका ओड़क सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहे सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे गुर प्रसाद दी साराई है हर पंक्ति रापे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवापे सब किस हर का खेल है गुरमुख से बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंदर रो आया परसराम रोवे कर आया अजाय सुरोवे पीख्या खाए ऐसी दरगह मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमण विछड़ गया रोवे देसर लंक गवाए जे सीता अंधी डौरू वाए रोवे पांडव पय मजूर जिनके स्वामी रहत हदूर रोवे जनमेजा खोए गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसायक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे राजे कन्न पड़ाए कर कर मांगे पीख्या जाए रोवे किरपन संचे तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए बाली रोवे नाए पतार नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाओ तो ही जिन जाए औरी कर्मना लेखे लाए महला दूजा जब ताप सब कुछ मन्ने अवकारा सा बाद नानक मन्या मन्निए बुझगे गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुरमेल करते लिख पाया थमे गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण माये सुमाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किस आपे आप है आपे दे वड़ियाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना परखण जाए रत्ना सार ना जानई आवे आप लखाए महला दूजा रत्ना केरी गुसली रत्नी खोली आए वखर तै बन जा रहा दोहां रही सुमाए जिन गुण पल्ले नानका माणक बन जैसे रत्ना सार ना जानई अंधे वत्ते लोए पौड़ी नौ दरवाजे कया कोट है जिसमें गुप्त रखी जय वज्र कपाट ना खुलनी पुर शब्द खोली जय अनखद वाजे तुन वज दे पुर शब्द सुनी जय तेतकड़ अंतर चानना कर भगत मिली जय सब में एक वर्तदा
ਜਿਹਨੇ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਹੋ ਕਿਉ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ ਥੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਹੁਕਮੋ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ ਥਾਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਅਨ ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ, ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾ

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देव रात मुरारी, महला पंजवां, ताही मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराधमान, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया

ते जम नाहे दुख जितू आवे चित इसके काड़िया जिदा करता मित्र सब काज सवारिया जितू आवे चित तो परवान जान जितू आवे चित बहुता ते स्थान जितू आवे चित तू वड परवारिया जितू आवे चित तिन कुर उधारिया सलोक महला पंजवा अंदरों अन्ना बारों अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तोवे चक्र बनाए माया नू बहुतावे अंदर मैल ना उतरे हों में फिर आवे जावे नींद व्यापिया।

पावे। सिख हंस सरवर इकट्ठे होए, सतगुर कै हुकम आवे। रतन पदार्थ माणक सरवर पर पूरे, खाए खर्चरे तोट न आवे। सरवर हंस दूर न होई, करते एवे पावे। जन नानक जिसदे मस्तक भाग तुर लिखिया, सो सिख गुरु पै आवे। आ करिया कुटम सब तारे, सबा सिरट छिडावे। महला पंजवां, पंडित आखाए बहुती राही। कोर

आनाओ, मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

पौड़ी। वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने, पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खने। दिन सरैन तेरा नाव तदासा जापिए, तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापिए। रोग सोग दुख वंजे जिस नाऊ मन बसे, तिसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै।

तिस दर्द निवारणो, जितु मुठा चित तिस कदे न हारणो, जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारणो, जिसनु लाए सच तिस सच संभालणो, जिस आया हथ निधान तो रहा पालणो, जिसनु एको रंग भगत सो जानणो, ओ सबना की रेण बिरही चारणो, सब तेरे चोज विड़ान सब तेरा कारणो। श्लोक महला पंजवां। उस पे निंदा नानक जी, मैं हब मजाई छोड़िया हब किस त्यागी,

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रघाओ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमकना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तेन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया।

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारस है ना परस है, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाओ, देव सताने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगन अंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरुदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गहे, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री

प्रस्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के, नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर घर राम रंगे, हर घर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

तुमरी संगत हर को ना उधरियो, प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारियो, प्रवरा की पैज जानगे, जो तुमरे गुण गावे स्वामी, हम बाल बाल बाल तिनगे, पावन पावन पितर सब किए, जे तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम, तुम वड वड़ पुरख वडगे, जन नानको दया प्रवतारो, हम सेवो तुम जन पगे, नट मोहल्ला चौथा, मेरे मान जप हर हर नाम मने, जगनाथ कृपा प्रतारी, मत गुरमत नाम बने रघाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, केल भग पाप नाम हर काटे, जिव खेत किसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रव जान हो, हम कह न सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रव तुम ही, गुण जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बो बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तनुए बंदेओ, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो जुग जुगने, तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रवडने, नट महला चौथा, मेरे मान कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रतारी, लग सतगुर हर जपने रगाओ, हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर उड़ने, जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने, ए प्रपंच किया प्रस्वामी, साब जग जीवन जुगने, जो सलल है सरल उठे बहुलहरी, मिल सलल है सलल समणे, जो प्रो किया सो तुम ही जान हो, हम न जानी घर गहने, हम बार्क कहो विपुस्त तारो, हम करे प्रभु सिमरणे, तुम जलनिध

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाय, सुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊहा हर तुमगी यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासियो।

सतगुर ज्ञान मजन गए नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे पारस निपरस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

किछु न जानहू, हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगणित मेल ते, गुरु राखे दीन दयाला, बहु मैले निर्मल होया, साब केल बिखार जस जाला, मन अंध पया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला, माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मान हार पाज, साब केल बिख काट।

जियो जास नाम दुख बिन से सुखियो विश्राम सगल निध हर घर घरे मुन जनता की सेव करे जाके कर सगले समागे जिते बिरता कोई नागे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेव हो किरपाल सदा धर्म जाके दीबान बेमोहताज नहीं किश कान सब कुछ करना अपने आप अरे मन मेरे तू ताको जाप सा संगत कहो बलिहार जस मिल होवे उधार नाम संग मन तने रा।

कोय, पूर है या सगल मंडल एक स्वामी सोय, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बीन बाजे, मदर मदर तुन अनहद गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन किसन ओढ़े कामली।

तेरा नाम त्याय तिनको सद मिले। बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार नाम न पाया तेरा, अंधा परम फूला मन मेरा रखाव। साद कीते दुख पर फोड़े पूर्व लिखे माए, सो थोड़े दुख अगले दुखे दुख विखाए। विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल, साहेब सो साल आईये जिन कर देखा खेल। संजोगी में लावड़ा इन तन कीते पोग, वे योगी में विछड़े नानक पी संजोग। मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लिख लखाया लिख दात जोत वड्याई। मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मान ताहे कर से माना, उठ चलना खस में पाना रहाओ। ताज साध सहज सुख होई कर छड़ने रहे न कोई, किस खाजे किस तर जाइये ये भावड़ दुनिया आइये। सदकाया पट हंडाए फुरमायस बहुत चलाए, कर से सुखाली सोवे हथी पौंदी काहे रोवे। कर कुमन वाणी पाई पा पत्थर तरन न जाई, बहु बेड़ा जी हो चढ़ाऊ कहो नानक देवे काहू। मारू महला पहला कर पहला करणी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दुए लेख पाए ज्यों ज्यों किरत चलाए। त्यों चलिए तौ गुण नाही अंत हरे,

खाए तापी सन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जब तरह तेरा नाओ, लून खरामी नान कलाला, बगसे तुद बड़े आई, आद जुगाद दया पद दाता, तुद विन मुक्त न पाई, मारू मोहल्ला पहला, कोई आखे पूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, भया देवाना साका नानक बौराना, हों हर बिन अवर न जाना रखाओ, तौ देवाना जानिए या पै देवाना होए, एक ही साहेब बारा दूजा अवर न जाने कोए, तौ देवाना जानिए या एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए, तौ देवाना जानिए या साहेब तरे प्यार, मंदा जाने आप को अवर पला संसार, मारू मोहल्ला पहला।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा परा किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत्स पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

परम पुलाए ओ ना मितिया पवर्तदा करना किसू ना जाए जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनूरहो कंचन होए सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर न कोए मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के बजन आराध तू अन दिन गुण गाओ रखाओ गुरमुख एको जानिए जिन सतगुर दे बुझाए सो सतगुर सालाइए जिदू ए सोजी पाए सतगुर छोड़ दूजे लगे क्या करन अगे जाए जा पुर बदे मारिए बहुती मिले सजाए मेरा प्रभ वे प्रवाहो है ना तिस तिल ना तमाए नानक ते शरणाई पज पो आपे बख्स मिलाए मारू महला चौथा कार दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर घर शरण परे दालद पंच सुदा में मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतार्थ गुरम कृपा करे मेरे मन नाम जब उधरे रूप प्रहलाद बिद्रदासी सुत।

परे उधरे जन नानक हर कृपा धारी उर तरे ओ नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समझ प्यो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी ताया मुख इंदराद करव्या शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत तरया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख।

प्रेनाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सावास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन निरजास हर गुर विच आप रखे हर मिले गुर सावास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दातार है ओ मांगो दान गुर पास किरीम चुना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत घर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईगे अकथ कहानी संत जिना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रभ तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत सरदा उपजे गुर सबदी हर चाख साब मन तन हरिया होया।

असाध रोग उपजो तन पीतर कर तन काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रव राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो साचा सोए सुख पाया फिर दुख न होए।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस घी निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इसते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम देहे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवां।

नित लेह जलत नाही अग्न सागर दुख मन तन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन चूलत मेह हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एह मारू महला पंजवां।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रहाओ। जम को डांड परे सिरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता होत आपके पुछताए, झूठ तो नाहन पागे हो। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागे हो, सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागे हो। मारू अष्टपदियां, महला पहला, कार पहला, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम थाके पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

गुरपूरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लय, गुर को बल जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, सचे बैसन उठना, सच भोजन भाख्या, चित सचे वितो सचा, साचा रहचा खिया, साचे घर साचे रखे, गुरबचन सुपाखिया, मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चुगड़ी, लाग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे नेताड़ी, अनहत लाला विद्या, प्रभगेत प्यारी।

रखाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सबे सेर आहे निस दात सुमार करे चार पदार्थ लय जग जन्मया शिव शक्ति कर वास तरे लागी भूख माया मुग जोग मुग्ध पदार्थ मोहे करे कारण पलाव करे नहीं पावे एत उद ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार वे आपे कूड़ कुटां से प्रीत करे खावे पोगे सुन सुन देखे पैर दिखावे काल करे बिन गुरु शब्द न आप पछाणे बिन हर नाम ना काल टरे जेता मोह में कर भूले मेरी मेरी करते शीन करे तान तन बिनस सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन खिसिया ताप कंठ बरुद्ध हो नैनो नीर टरे चरण रहे कर कंपन लागे साग तराम न हृदय हरे तुरत गई काली हूं तौले इसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लाग गए जाम मार सुमारे नरक खरे पूर्व जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन हो मरना बिन गुर शब्दे जन्म जरे खुशी खुआर पै रस भोगण होवट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर पर नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो संगत हर जन पाओ करे हर जन गुर प्रधान द्वारे नानक तीन जन की रेन हरे एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सहे जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जा कहे अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुंजा वेद करे उचार तेमर स्वामी सुख सहज पुंच नहीं अंत पारा वार अनक प्राशित मिटे खिन महे हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोड़दान इसनान बल बुद्ध सुध प्राण सर्वस संतना की रास बिसर नाही निम

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मांस अगर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तेल तेल, मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत, संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कछु जाने, सर्व जी समत कर प्रगास, प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है करण लागे, मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागेओ, तिल ना संका मान, तो पाए अपाए जो निकटे आवे, सीत ताका जाए, आप पर का कछ ना जाने, सदा सहज सुपाए, चरण सरण सनात त्यो मान।

तेणी संगम आठसठ अंक समाई हे। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली

आपे बगसलए सुख पाए सदगी नाम निवासी हे। यो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा सच तन जम्या तोट न आवे अंतर नाम निवासी हे। हर जीव अवगुण आरे नू गुण कीजै आपे बगसलए नाम दीजै गुरमुख होवे सो पद पाए एकत नाम निवासी हे। अंतर हर तान समझन होई गुर प्रसादी बूझे कोई गुरमुख होवे सो तन पाए सदगी नाम निवासी हे। अन लवाओ परम पुलाई माया मोहे सुध न काई मानव अंधे किशु न सूझे गुरमत नाम परगासी हे। मानमुख होमे माया सूते अपना करना संभाले अंत विगूते पर निंदा करे वो चिंता जाले दुखे दुख निवासी हे। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम निवासी हे। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा दूजे लागा सब जा काचा गुरमती सदा सच साला ही साचे ही साच पतीजे हे। तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता आपे लाए लाए जग जीवन दाता आपे बगसे दे वड्याई गुरमत यो मन पीजे हे। माया लहर शब्द निवारी यो मन निर्मल होमे मारी

निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चग चग आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी हे, हर हर नाम जिनी सदा त्याया, तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन घर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पशो ताणी हे, तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी हे, मारू सोलहे महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तला उपाय करी जिन तरना, गगन रहाया हुमे चरणा, अगन उपाय ईदन मैं बाधी, हो प्रा राखे भाई हे, जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ आपाहे, खिर मैं थापो थापन हारा, तोई तेरा सहाई हे, माद गर्भ में जिन प्रद पालिया, सास ग्रास होय संग समालिया, सदा सा जपगे सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई हे, सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रामीरे, गर्भ निवारण सर्व सधारण, किस कीमत कही न जाई हे, सो पतवंता सो धनवंता, जिस मन वसया हर भगवंता, माद पिता सुद बंध भाई, जे ए सिरिट उपाई हे, प्रव्याय सरना पौनी करना, साध संगत ने चो है तरना, मन भज कर्म अराधे करता, जिस नाही कदे सजाई हे, गुण निधान मन तन मय रव्या, जन्म मरण की जोन न पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहाँ तृप्त रहे आगाही हे, मीत हमारा सोई स्वामी, थार्थ अंत अंतर जामी, सेवार सिमर पूर्ण परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई हे, हर का नाम कोट लख बाहा, हर से कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई हे, हर का जाप जपो जब जपने, जीत आभो वसो कर अपने, लग चौरासी नरक न देखो, रसक रस गुण गाई हे, खंड ब्रह्मंड उदार नगारा, ऊच अथा अगम्य पारा, जिसनों कृपा करे प्रभ अपनी, तो जन तसे

बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में सोभ सुहाई है, जय जय कार्य पूजग दीसे, बल बल जाई प्रभ अपने ईसे, इस बिन दूजा अवर न दीसे, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खजम हमारा, सिमर नाम पुन्नी।

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्श होन हर नाम समाने आपे भगती लाए होन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोने सच्चे दर जाने एथे उथे मुक्त है जिन राम पछाने तन तन से जन जिन हर सेविया तिन हो कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण मुंद महला पहला साज सील सत संजमी सा पूरी परवार नानक ऐन सदा भली फिर के गेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निदान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर चनी चाखिया हंस ठाक रखाया हर पी सदा तृप्त भये फिर तिशना भुख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशगे तन रावगे तन उर नाम सिगार नानक तन आगे खड़ी सोभावंती नार महला पहला ससरे पई गे कंत की कंत अगम अथाहो नानक तन सुहागणी जो भावे वे प्रवाह पौड़ी तख्त राजा सोभ जे तख्ते लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से ए भूपत राजे न आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या सालाइए जे जांदे बिल मना होई निचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे तो निचल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाग नानक से सोहागणी जे सतगुर माए सुमागे महला तीजा मन के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुटी है जे राते सच रंग गूढ़े रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुटी है जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजे आपे सिट सब साजियन आपे वरतीजे गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजे गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हरस पीजे आमन जाना ठाकिया सुख सहज सुवीजे सलोक महला पहला ना मैला ना तुंदला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच महला तीजा सहज वनस्पत फुल फल पर वसे पै खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जोजन लूजे मने स्यो से सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पछाना ज्ञानिया का यो महत है मन माये समाना हर जीव का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतिया जग तिन्ह जिताना सलोक महला तीजा जोगी हो वहां जग पवां धर कर भिख्या ले दरगह लेखा मंगिए केस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा

मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी, दूजे पज जावे, आत क्रोध से लूज दे, अगे पिछे दुख पावे, हर जीव अहंकार ना पावई, वेद कूक सुनावे, अहंकार

होए, देही नो शब्द सीगार है, जित सदा सदा सुख होए, नानक गुरमुख बुझी है, जिसनु आप वखा ले सोए पौड़ी, अंतर जब तब संजमो

प्यार अंदर सुख ना होवई मनमुख जन्म कुवार नानक नाम रते से उबरे गुर के हेत अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा जित पावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर सबदी रचा गुरमुख सदा सलाई है सब तिरदे जचा जो नानक आप नचाएदा तिव ही को नचा सुध मारू वार महला पंजवा दखणे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया डेई सिस उतार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार महला पंजवा निहु महिंजा तऊ नाल ब्याने कूड़ा वे डेख कपड़ पौ डरावणे जिचर प्री ना डेख महला पंजवा उठी चालू कंतड़े हों पसी तो दीदार काजल हार तंबोल रस बिन पसे हाबरा शार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हरि आग्या होए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण विस्तारिया नौखण पृथ्वी साज हर रंग सवारिया वेकी जंत्यो पाए अंतर कल तारिया तेरा अंत न जाने कोय सच सिरजन हारिया तू जाने सब आप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तौ मोया कद पस्ती जानी तोह महला पंजवा दुर्जन तू जल पाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ से जड़ी मैंडा हब्बो दो।

कर हीड़े हिक आधार त्यो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर है त्यो पापी मूल न तग अय कर करे सो अय कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब से मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया तिस कर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गोर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवा लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सो तनी चौदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोय माओ डिणना तनी अपाह हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए महला।

करना जे सो तावे प्राणिया पावे तुर लेना बिन कर्मा किशु ना लबई जे फिरे सब तरना गुरमिल पाओ गोविंद का भय डर दूर करना भय ते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजिया फिर जन्म ना मरना हे आए कुमाए ते हया पाया साध सरना बोहित नानक दियो गोर जिस अर चढ़ाए ते पौजल तरना सलोक मोहल्ला पंजवा पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास हो सबना की रेण का तो आओ हमारे पास मोहल्ला पंजवा मुआ जीवन दा पेख जीवन दे मर जान जिन्ना मोहब्बत एक स्यों ते मानस प्रधान मोहल्ला पंजवा जिस मन वसे पार ब्रह्म निकटना वे पीर ओख तेख तिसना व्यापई जमनी आवे नीर पौड़ी कीमत कहण न जाइए सच सा अडोले सिद्ध साधक ज्ञानी त्यानिया पौण तुद नु तोले भन्नण कारण समर्थ है ओपत सब परले कारण कारण समर्थ है घाट खड़ सा बोले रिजक समाखे सब से क्या मानस डोले गहर गंभीर अथाओ तू गुण ज्ञान अमोले सोई कम कमावना किया तुर मौले

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जी उते सवे सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तल ताके, हर घ हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनागी। सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सुखमा देसो तू पल। हार जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निगाले सातन। तू सुनया तमरामा बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबरस चोले। अंक सुमाणिया हर अंक सुमाणी, जा प्रा पाणी सा सुहागण नारे। नव कर थाप मैल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस बसर रंग रावे। नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे। तू सुन हरस पिन्ने प्रीतम अपने, मन तन रब तरवन्ने। कड़ी ना बिसरे क्यों कड़ी बिसारी, हो बलिहारी हों जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हों किस केरा, हार बिन रहन ना जाए। ओढ़ गई हर चरण निवासे, पाए पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुर शब्दी मन तीरा। बसे अमृत तार बूंद सुहावनी, साजिन मिले सहज सुपाए। हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदर आवे जा प्रा पावे। तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण। हौ क्यों कंत वसारी, उनो कनशाए बरस सुपाए। मंतन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी। कर कृपा कर आवे, चेत बसंत फला पावर सुहावड़े। बन फूले मंज बार, मैं पिर कर बहोड़े। पिर कर नी आवे तन क्यों सुख पावे, बिरे ब्रो तन छीजे। कोकल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे। पावर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए। नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर कर तन पाए। वैसाख भला साखा वेस करे, तन देखे हर द्वार आप हो दया करे। कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुत बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे तुत पावा, देख दिखावे ठोलो। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वैसा की प्रपावे, सुरत शब्द मन माना। माहो जेड़ पला प्रीत क्यों बिसरे, थल तापे सर पार। सातन बिनो करे तन बिनो करेंदी, गुणसारेंदी गुणसारी प्रपावा। साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा। निमाणी नितानी हर बिन, क्यों पावे सुख मैली। नानक जिड़ जाने थी जैसी।

तीर्थ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गए अंक सुमानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्राभंके तुद पावा सरनावा गंग जमन तै बेणी संगम सात समुंद सुमाव उन दान पूजा परमेसर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप।

पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसिया गोर सतगुरु पूरा तिन के किलबिख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी।

सगुरु पिछे जिन हर घर नाम ते आया, गुरबचन मार्ग जो पंथ चाले, तिन जम जागाती नेड़ न आया। सब गुरु गुरु जगत बोले, गुर के नाए लये, सब छुटक गया। द्वितीया जमन गए गोर, हर घर जपन किया, तृतीया आए सुर।

माई संत संग जागी प्रेरंग देखे जपती नामन धानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी आओ गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महाप्रबल पही आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम वस्त्र।

संत संग हर चरण बोहित उदरते लय मोर गर्भ कुंट मैं जिने तारियो नहीं बिखे बन मैं होर हर सगत सरन

विनंती कत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्यों द्योरी कत सोभा पावे दर्स बिहू ना साध जान खेन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हरस कबैरागी नाम लिव लागी ततो न जाए नखेतया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक नाम आवे हो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रा मिले हर करना तारे निर्गुण नीज अनाथ मैं

ठिया मटिया संग न कछ ले जाए रगाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए, मा हट लग सब लोग कुटंब मेल, हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुरपाटन, बौर न देखे आए। कहेत कबीर राम की।

पीर अद पारी गुरमुख राम जपो रस रसना एन बिद तार तू तारी बहरे करन अकल पई होची साबद सहज नहीं बूझया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंध न सूझया रहे उदास आस निरासा सहज ध्यान बैरागी परमत नानक गुरमुख छूड़स राम नाम लिव लागी भैरो महला पहला ढूंढी चाल चरण कर खिसरे तुचा दे कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बैरे मनमुख नाम न जानी।

को दर कार कभू न जानस, एको दर्श त्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा भैरों महला पहला, अगली रैन सोबत गल फाही, दिन सजंजाल गवाया, खेन पाल कड़ी नहीं प्रो जानिया, जिन एहो जगत उपाया, मान रे क्यों छूटस दुख पारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रगाओ, ऊन दो कावल मानमुख मत होची, मन अंधे सिर तंदा, काल विकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, साबद सुरत नहीं पाई, सातर वेद त्रै गुण गए माया, अंधलो तंद कुमाई।

का आकारा काटवद को करे बिचारा तहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गरीब पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया बदमाता रहे आसोए जागत रहे नामूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे जो एको जान।

होय। निकर वसै सहज सुभाय, गुरमुख नाम से मन आय, आपे वेखे वेखण हार, नानक नाम रखो उरतार। भैरो महला तीजा, कल युग में राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद।

जम काल सदा है सिरे ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पड़ पड़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हां मन वसिया।

अवगुण शब्द जलाए, जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए, कार दर महल सदगुरु दिखाया, रंग सिवर लिया माने, जो उश कहे सो भला कर माने, नानक नाम वखाणे, भैरों महला तीजा, मनसा मने समाए लय।

तय उबार खिन मय भयान रूप निकसा थम उपाड़ अरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे

इनका दर्स देख मन बिगसे खेन खेन तिस को होम बलिहारी हार हृदय जापो नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पे स्वामी हम दासन दास कीजे पनिहारी रहाओ। तेन मत उत्तम तेन पद उत्तम जिन हृदय वसिया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तेन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साधन पाया ते हर दरगे काडे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तेन नग काटे सिरजनहारी और आप बुलावे आपे बोले और आप निरंजन निरंकार निराहारी और जिस तू मिले सो तू मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी। भैरों महला चौथा सत्संगत साई हर तेरी जे तर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम सरेवे निरचरणे जग जीवन हर ध्याए तरणे।

जिन सेव्या निरपो सुखदाता, तिन पो दूर किया एक पराता, जो तू करे सोई फुन होए, मारे ना रखे दूजा कोए, क्या तू सोचे मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसो ध्यान, बिन पै

दृढ़ रोग पद मोए पतंगा, नाद रोग खब गए कोरंगा, जो जो दिस तो सो रोगी, रोग रहत मेरा सदगुर जोगी रहाओ। जेवा रोग मीन ग्रस आनो।

भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूदरल की नी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एके रंग लीने, भैरो मोहल्ला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया

हर घर जपना कहो नानक जो जन प्रापाए ताकि रेन बिरला को पाए भैरो महला पंजवा चितवत पाप ना आलक आवे बेसवा भजत इस न शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमन की वेला बजर सिर परे माया लग फूलो संसार आप भुलाया भुला मनहारे अराच रहया बिरथा व्यवहार रगाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार ना जी मैं पावे करत करत भी दुख पाया पूर्ण होत न कार्ज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़फ मुआ जो जल बिन मीना जिसके राखे हुए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन नमसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो निरपाई तार लय सागर संसार रहाओ जिन को लिखिया हर इहो निदान सेजन दरगे पावे मान सोग सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न तावे ताओ जुगे जुगंतर इहो तत्सार हर सिमरन साचा बीचार जिस लड़लाए लय सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी जन सब तेरे हाथ नानक के प्रसद की साथ भैरो महला पंजवा नाम हमारे अंतर जामी नाम हमारे आवे कामी रोम रोम रवे अगर नाम सगुर पूरे कीनो दान नाम रतन मेरे पंडार अगम अमोला अभर अपार अरहाओ नाम हमारे नेचल तनी नाम की महिमा सब

का स्वाव नाम न विसरे संत प्रसाद, नाम लय अनहद पूरे नाद, प्रभु कृपा ते नाम नव निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई, तनवंते से ही प्रधान

ते सरणा इस दा सुख होए, पर कृपा जाको मिले सोए रहाओ, जाके करतब लखे ना जाहे, जाका परवासा सब कड़माहे, भगत पया साधु के संग, भगत आराधे अंध न रंग, देंदे टूट नही पंडार, खिर में थाप्यो थापनहार, जाग हुक्म न मिटे कोए, से पास सहा साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमारा तिसकी पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, भैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन कहो संबंध चित आया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, बिखिया का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार, रहाओ सिर्फ माया रही बेआप, जो लपटानो ते दूग संताप, सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निधान बड़भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रीझावे, स्वांग उतारे फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तनहार, ऐसो परपंच मोह विकार, एक वस्त जे पावे कोए, पूर्ण काज ताई का होए, गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो परवान, भैरों महला पनवा, संत की निंदा जो नी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम, दान दैत निंद को जाम।

प्रवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा भैरों महला पंजवां।

निमखन छोड सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर न कोय सार समाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु का मन जोर एक बिना दूजा

पार ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सदगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अरहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्यार

अर्ध उर्ध मुगला गोकास तुंड मंडल में कर परगास ऊगा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मंड पिंड सुजान मान सरोवर कर स्नान सो हं

विद्या कोट सबे गुण कहे तउ पार ब्रह्म का अंत न लहे बावन कोट जाके रूमावली रामन सयना जयते शली सहज कोट।

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर तान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी।

परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाय नामे दुई आनी दूध पियो गोबिंदे राए दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए अरहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा

भगत जिना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज, जैसी

और एक ठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुहे राख पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हर नाग सजन नखे बधारियो।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला आपने।

सगल कलेश निंदक पया खेद, नामे नारायण नाही भेद, कार दूजा जौ गुर देवता मिले मुरार, जौ गुर देवता उतरे पार, जौ गुर देव ता बैकुंठ तरे, जौ गुर देवता जीवत मरे, सत सत सत सत।

साखा हरी धर्म फूल फल ज्ञान पद प्राप्त शाप कणी चूका मन अभिमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख

सिमरत सातर करे वखियान। नादी बेदी पढ़े पुराण, पाखान दृष्ट मन कपट कमाहे। तिनके रमैया नेड़ नाहे, जे को ऐसा संजमी होए। किरिया वसे पूजा करे अंतर लोभ,

आपा पढ़िए पंडित करो विचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन विद पावो प्राण पति रघाओ पीतर अगन वनस्पत मौली सागर पंडय पाया चंद सूरज दो करगी पीतर ऐसा ज्ञान न पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रेह कया सुने ना खाया मन है तेना ही सेती वासा परुणत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हिंडोल महला पहला साचा साओ गुरु सुख दाता।

पावे, सदा शुभ शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रसेवे सहज सुपाए, नानक नाम से मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर के द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुपाए, सच फल लागे।

पद खोए साचा सेवो साची बाणी नानक नामे साच सुवाणी बसंत महला तीजा बिन करमा त परम भुलाई माया मोहे बहुत दुख पाई मानव अंधे ठौर न पाई बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए सुमाई हुकम मन्ने सु जन परवान गुर के शब्द नाम निशान अरहाओ साजर ते जिना तुर लिख पाया हर का नाम सदा मन पाया सतगुर की बाण।

गुर शब्दी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुमरे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द इहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रम मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल

अरहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद, काहे जन्म गवाब हो वैरवाद, गुर कृपा कीनी चूका अवमान। सहज पाए पाया हर नाम, उत्तम ऊंचा शब्द काम, नानक वखाणे साच नाम, बसंत महला तीजा। बनसत मौली चढ़िया बसंत, यो मन मौल्या सतगुरु संग, तुम साज त्यावो मुद मना, ता सुख पावो मेरे मना। रहाओ एत मन मौल्य पया आनंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, एको एक तब आख बखाणे, हुक्मे बूझे ता।

सतगुर प्रसाद गुर की बाणी विटों वारिया भाई गुर शब्द विटों बल जाई गुर सलाई सद अपना पाई गुर चरण

आमना रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी सब गुरु मेरे ता खोजिए मेरे ज्योति ज्योत सुबानी माधो साधु जन देव मिलाए देखत दर्श पाप सब नस पवित्र परम पद पाए रघाओ पंच चोर मेरे लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत।

सब संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हारस पुंज रहाओ। सब संगत साध दया कर मिल हो, शरणागत साधु पंज। हम डुबदे पाथर काढ़ लेहो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज। हर उस्त तारो रिद अंतर स्वामी, सब संगत मिल बुद्ध लाइ। हर नामे हम प्रीत लगानी, हम हर विटों कुम वाइ। जन के पूर मनोरथ हर प्रभ, हर नाम देवो हर लाइ। जन नानक मन तन अंध पया है, गुर मंत्र दियो हर पाइ। बसंत महला पंजवा कर पहला, दो तुके एक ओंकार। सतगुर प्रसाद गुर सेव कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चार।

प्रभु देहे साध संगत में इहो विश्राम सदा हृदय जपी प्रभु तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

काट काट रया समाय, जाके भगत आनंदमय, जाके भगत को नाही खै, जाके भगत को नाही पै, जाके भगत को सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रवरयो समाय, नानक जाचे एक दान, कर कृपा मुझे देहो नाम। बसंत मोहल्ला पंजवा, मिल पानी ज्यों हरे बूट, साध संगत त्यों होमे छूट, जैसी दासे तीर मीर, तैसे उदाहरण गुरे पीर, तुम दाते प्रभ देनहार, नेमख नेमख इस नमस्कार, अरहाव जिसे प्राप्त साध संग, हे जन लागा पार ब्रह्म रंग, ते बंधन ते पय मुक्त, भगत आराधे जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्स पेख, रसना गाए गुण अनेक, तिसना बूझी गुण।

साधु संगत गुरे बताई, ऊहां जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम, सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम तुना, नानक गुरमिल गाए गुना, बसंत महला पंजवा, जिस बोलत

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप। जाके सिमरन नहीं संताप, खसम त्याई एक मन एक पाए। गुर पूरे की सदा सरनाई, साचे साहेब रखिया कंठ लाए। रघाओ अपने जान प्रभ आप रखे, दुट दूत सब प्रम थके। बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख दे संतर रहे ताए। किरत ओ ना का मिटसनाहे, कोई अपना बीजिया आप खाहे। जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतन आप, अखंड पूर्ण या को प्रताप। गुण गोविंद ने दर्शन गाए, नारक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया। पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम। जब जीवे नानक राम नाम, तारुत सुहावी जित हर चित आवे। बिन सदगुर दिसे बिल लांती, सागत फिर आवे जावे। रघाओ से तनवंत जिन हर प्रवरास, काम क्रोध गुर शब्द नास। पै बिन से निरपय पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो लिवास, हर जप जप होई पूर्ण आस। जल थल महियल रह रया, गुर मिल नानक हर हर कहया। अष्ट सिद्ध

प्रकाट मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे आप करे आप करने हारे, तर कृपा नानक उधारे। बसंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे, चरण कमल पागे तो मिलो प्रस भागे, हर चेत मन मेरे अरहाओ सगन बाज कूले, एक रह सूख कठूले बसंत रुत आई प्रफूलता रहे, अब करू आयो रे एक नाम बोवहो बोवहो, अनरूत नाही नाही मत।

नापण थज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला पहला मन पुल्लो परमस आए जाए अत लुद लुबानो बिखमाए न अस्थिर दिसे एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन पुल्लो समझस साच नाए गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ मन पुल्लो परमस पावरतार बिल बिरथे चाहे बहु विकार मैग जो फासस कामहार कड़बंधन बाध्यो शीस मार मन मुग्धो दादर भगत हीन दर पलट सरापी नाम बीन ताके जात न पाती नाम लीन तब दुख सुखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राखे पत न साख तू आपे सुरता आप राख हर तारण देखे जाने आप आप पुराए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माए अब गुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सतगुर मिले मत उत्तम होए मन निर्मल होमे कड्डे तोए सदा मुक्त बंद न सके कोए सदा नाम खाने और न कोए मन हर के भाणे आवे जाए सब में एको केश पहन न जाए सबको वरते हुक्म सुमाए दू सू सब तिसर जाए तू अपुल ना पुलो कदे नाहे गुर शब्द सुनाए मत अगाहे तू मोटो ठाकुर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे

तय लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जोन माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पजो

दू सुग बंधो संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंदन नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खाहे जाके कीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिण मैं गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माघ जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहे हो सब समान।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर।

तित करे वाजे पंच शब्द वड़पाग मथोरा, तेन जन के सब पाप गए, सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तेन जन के हर मार कढे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सहसृढ़ का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सत जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे वेत कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यो जल की, सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्व प्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाव्या तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एक, तेरी गतमत कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाईगे, तब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग ताश्यो गोष्ठ, हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है।

देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम घर तोड़ न कथु जाए, कम उपमा कौन बढ़ाई क्या गुण कौरी जाए, होत कृपाल दीन दयाल प्रभ जन नानक दास दिसाए।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई। दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहु विद उमकाई रखाओ। चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई। जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई। जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई। एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई। मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई। प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक कोर में उर्तव करता नेमख नेमख गुण गाही। अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही। करे बुराई ठगाई दिन रायन निफल कर्म कमाही। कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परेओ कुसुमाही। तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही। सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही। सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई। रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई। करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई। जे प्रसाद मिल गए प्रभु नानक बल बल ताके हो जाई। सारग महला पंजवा वह अवसर के हो बल जाई। आड़ पर अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई। रघाओ भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जन नाई। ऊच ते ऊच नाम दो समदरसी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संतरे नाई। संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे

मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिस गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे।

सुख सार समागम कोड़ बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवारे महापत्ते पातक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा को नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदैया मान करो अभिमान बोलो पूर चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सास होई कर रहया दे नाओ बलिहारी रखाओ क्यों दिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरड़ारी आदे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ ना ही किश मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा आप मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी और एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लब देव है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रखाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेमांग पेख आयो सब थान देश प्रे रोम न समसर लाग रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तेसो दृष्ट न करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम खुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबांग गुर नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लाग सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम्हे सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हे शत्र पात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना।

पयो पर गासा काट काट हर घर डीठा रखाओ पार ब्रह्म आजोनी संपो सर्व थान कट डीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्राव चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी की ये सगल तीर्थ मज नीठा कहो नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लय मजीठा सारग महला पंजवा हर घर नाम दियो गुरसाथे निमुख बचन प्रेही रे बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रगाओ किरपा निदान गुण नायक ठाकुर सुभ समूह सब नाथे एक आस मुए तेरी स्वामी और द्वितीय आस बेराथे नैन त्रिप तसे दिग दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नारक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पै लाते सारग महला पंजवा अरे मूड़े आन कहे कत जाई संग मनोहर अमृत है रे भूल भूल बिख खाई रगाओ प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते

मेरो एक पुत सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमर कहा गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लाडावे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बार्ग की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पय लिवलाई, सार्ग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइये, आस न अवर कहू की कीजे, सुखदाता प्रत्याये रखाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे कर, तिसकी सरणी पाइये, तिसे त्याग मानुख जो सेवै, तो लाज लोन हो जाइये। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद पाइये, गुण निधान नांग प्रा मिलया, सगल

सुखदाता होए सगल खलासी रघाव आवर न को सूजे प्रभिन कौ को किस पै जासी ज्यो जानो त्यो राखो ठाकुर सब कुछ तुमकी पासी हाथ दे राखे प्रभु अपने सद जीवन अबनासी कहो नानक मन अंध पया है काटी जमकी फासी सारग महला पंजवा मेरो मन जद का तुझे सुमार है हम बारक दीन पिता प्रा मेरे ज्यो जाने त्यो पारे रघाओ जब भूखो ता भोजन मांगे हकाए सुख किनारे ताब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटकत हुए रवारे कवन बसेरो ता दासन को

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कौ नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख हरी रगाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान सिमरत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

दिवस चार के दिसे संगी, ऊहा नाही जय पारी, तिन स्यो राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी, हो नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नान के प्रभ, तंतन संग उधारी, सारग महला पंजवा, मोहनी मोहत रहे न होरी, साधक सिद्ध सगल

अंध कूप में पतत होत जग, संतो करो परम गद मोरी, साध संगत नानक पयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी।

गाव, जाके सूद परोए जनता, तिस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना, आन कहां पे जाओ, सबल सेवा स्वामी मेरे की, मन बांझ।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया, सारग महला पंजवां, हर के नाम की गद ठांडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ, शिव ब्रांच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रभ गिरिया, जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा, सारग महला पंजवा, जेवे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की, उचरो प्रभु को नाओ रगाओ, राम नाम रतन तन संचो, मन तन लाभो पावो, आन विभूत मिथ्या कर मानो, साचा ए सुवाओ, जी प्राण मुक्त को दाता, एक सस्यो लिवलाओ, कहो नानक ताकी शरणाई, देत सगल अपयाओ।

पंच दोख शिद्र या तरम है विखे ब्याद की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरनी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांछित चितवत नानक दास।

छोड़ो कपट होए निरवैरा तो प्रभ संग निहारे सतन वंजो सतन संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही अगन

साध संगत ओहे निर्मल बौड़ जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तू नितावे थाओ सास सास समाल हर हर नानक सरबल जाओ सारग महला पनवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ मुगत पदार्थ साधु संगत अमृत।

इच्छा सगल पुजाई, जाको कृपा करो प्रा मेरे, तो हर का जस गावे, आठ पैर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे।

प्रभ सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग तन माल सारग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रघाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

पंजवा त्रिसना जलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात अंत पर तिहार रगाओ सांत सुख न सहज उपजे ए इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम क्रोध है जार संसार सागर दुख व्यापे हो।

दर्शन पेख मेरा मन मोयो, दुर्मत जात बही रघाओ, अगे अगाध ऊच अबनासी, कीमत जात ना कही। जल थल पेख पेख मन बिकस्यो, पूर रहो सर्व मही, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मेरे साधे कीनो सही। सेमर सेमर जीवत हर नानक, जम की पीर न फही, सारग मोहल्ला पनवा मायरी, मन मेरो मतवारो। पेख दयाल अंध सुख पूरन, हर रस रप्यो खुमारो रघाव, निर्मल पै उजल जस गावत, बौर न होवत कारो। चरण कम से डोरी राची, भेट्यो पुरख अपारो, कर गए लीने सर्बस दीने, दीपक पयो उजारो। नानक नाम रसक बैरागी, उले समूहा तारो। तारग महला पंजवा मायरी, आन सिमर मर जाहे, त्या गोविंद जीन को दाता, माया संग लपटाहे रघाव। नाम सार चले अनमार्ग, नरक कोर में पाहे। अनक सजाई गणतन आवे, गर्भ गर्भ परमाहे, से तनवंते से पतवंते,

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढ़े साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार। नानक दासन दाजन तेरा

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ। साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे, सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले। चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान।

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए, रावण गो गोपाल करते नानका सज जोए। सारग महला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन राचे मितन सब विस्तार रखाओ। साध संगम बज स्वामी पाप होवत खार, किरनार बिन बसाहिर दे बौर जन्म ना मार।

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप हरन नाब रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रखाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा मन बिरागेगी खोजती दरसार रगाओ थाधु संतन सेवक प्रो हीरे त्यायो आनंद रूपी पेख के हो महल पावोगी काम करी सब त्याग के हो शरण परोगी नानक स्वामी घर मिले हों गुरमनाब होगी सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग के मन संतन पाए बेचायो जात जन्म कुल खोइए हों गावो हर हरी लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी गुरमुखो उपदिसया नानक सेव एक हरी सारग मोहल्ला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू कीड हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू ने बर्न बर्न ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू सारग महला पंजवा करत केल बिखे मेल चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर नौपरी चुनंतकार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे रगाओ तीन पौने लपटाए रही काज कर्मना जात सही ओ मत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा हर बिन तेरो को ना सहाई कां की माल पिता सुद बनता को काहू को पाई रगाओ तन धरणी पर संपद सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रह नाई सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही रखाओ कां को तन तान संपद का की का स्यो नेहो लगाई जो दिसे सो सगल बिनासे ज्यो बादर की शाही तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सो सुपने पी नाही सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे माया माद बिखे रस रचियो आराम सरन नहीं आवे रगाओ यो संसार सगल के सुपनो देख कहा लोभावे जो उपजे सो सगल बिनासे रहन न को ऊ पावे मितया तान साचो कर मान्यो